दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है सितारा।

थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे सितारा फिल्म से, आवाजें भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत है खानदान फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरंतरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।

0: बिजली बिल जीरो आया, आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में सम्पन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश

0: रविंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048 या 2371717 या 2371710 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर

0: में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for three subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
1: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demography composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
5: The National Testing Agency NTS announced retests for three papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTA said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The Sociology paper will be held on 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship eligibility for Assistant Professor and admission to PhD programs. NTA had formed a committee to inquire into and look into these errors. The committee recommended that in the interest of holding a fair and error-free examination, these three papers should be reconducted. JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has entered its 24th day, with students intensifying the protest over alleged irregularities in recruitment examinations. A fresh round of talks between the government and student representatives is scheduled for today. Here is a report.
6: JPSC-JSSC aspirants took out a protest march from Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Tikka Chowk in Ranchi yesterday and burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav. The students raised slogans demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into alleged irregularities in recruitment examinations. Meanwhile, the state government has invited the protesting students for talks today at 2 p.m. in Ranchi, with the students allowed to participate along with their legal advisors. The Reform Munch has said that if the government accepts the students' demands, steps could be taken towards ending the agitation, otherwise the protest will continue. The students have already announced a protest outside the Chief Minister's residence on August 20th, but said the final decision would depend on Devendranath Mehto's health and outcome of today's talks. Navish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
5: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will today launch the Electoral Literacy Club ELC 2.0 in Patna. This initiative has been seen as an important step towards giving a fresh impetus to electoral literacy, digital engagement and meaningful participation of citizens in democracy. We have a report.
7: ELC 2.0 is being launched keeping in the view of growing digital connect of the youth. The Election Commission had started the Electoral Literacy Club in the year 2018 with the aim of familiarizing young citizens with the electoral process. Under ELC 2.0, the target has been set to form ELCs in 15 lakh schools, 70,000 colleges and 1420 universities across the country over the next 6 months. All these ELCs will also be linked to the Election Commission of India's network ECI Net. Meanwhile, in another program, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will interact with around 500 booth-level officers at Nalanda University in Rajgir today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
5: Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogpuram from today, using the existing airport code VTZ. Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogpuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. It has 22 check-in counters, 18 self-baggage drop units, advanced screening systems, modern baggage handling facilities, and 7 aero bridges for a seamless passenger experience. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Government says 396 infrastructure projects of different ministries with an estimated cost of about 18.66 lakh crore rupees have been recommended for approval under the PM Gati Shakti initiative till date. The Minister of Commerce and Industry said that among these projects, 256 projects have been sanctioned, and out of which 198 projects are under implementation. It added these projects have been evaluated through the Network Planning Group NPG mechanism. PM Gati Shakti National Master Plan PMGS NMP is a whole of government approach to bring together various central ministries and departments and states and UTs to ensure integrated planning and coordinated execution of infrastructure projects. India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for today. An orange alert for very heavy rainfall has been issued for Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Heavy rainfall is also expected over Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Marathwada and parts of Northeast India. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Bihar, Jharkhand, Karnataka and Odisha today. Similar weather conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana and Andaman and Nicobar Islands for the day. Furthermore, the weather agency has forecast one or two spells of very light rainfall during afternoon in Delhi. Odisha braces for the spell of intense rainfall as the low pressure area over the Bay of Bengal is likely to intensify into a depression today, threatening to worsen the flood situation in northern districts. The IMD has issued a red warning for 4 districts and an orange warning to 11 districts with heavy to extremely heavy rainfall likely at several places in North Odisha. With rivers in Spate and Lakhs affected, the state government has intensified relief operations, while Chief Minister Mohan Charan Majhi will undertake an aerial survey of flood-hit Bhadrak and Jajpur districts today. We have more from a correspondent.
8: In the flood-hit areas, the situation remains challenging as inundation has affected large parts of several northern Odisha districts. The state government has cancelled the leave of officers in affected districts and deployed 3 IAS officers to coordinate relief and restoration work in Bhadrak, Baleswar and Jajpur. Schools and educational institutions are closed today in Mayurbhanj, Keunjhar, Bhadrak, Jajpur and Baleswar as a precautionary measure. Fishermen have been advised to stay away from the sea till tomorrow. In Jaleshwar and Baleswar district, 2 persons lost their lives and another seriously injured after a wall collapsed due to incessant rain. Authorities are closely monitoring vulnerable areas and river systems as fresh rainfall could further aggravate waterlogging and inundation. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
5: The 12-day-long annual pilgrimage to the ancient Baba Budha Amarnath Temple in Poonch district of Jammu began this morning amid tight security. The yatra will continue until August 28 and will culminate on Raksha Bandhan. Baba Budha Amarnath Temple, dedicated to Lord Shiv, is located in Rajpura village in Mandi Tehsil of Poonch district. We have more from a correspondent.
9: Lieutenant Governor Manoj Sinha today flagged off the first batch of the yatris from the Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu toward the border district of Poonch in the morning under tight security arrangements. District administration and local bodies have finalized arrangements including waterproof tents, community kitchen, langar locations, parking layouts and healthcare station along the pilgrimage route. Langars and reception

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3rd दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के 2nd दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
5: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में साथ

डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ,

0: उसने देखा।
1: वाह, क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
2: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
1: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
6: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
7: सुमेश, सुमेश बेटा, उठो, स्कूल का समय हो गया है।
1: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
7: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
1: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
7: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
1: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
7: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
1: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
7: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
1: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
7: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
1: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
8: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
8: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
7: जी।
8: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
7: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
7: अच्छा

0: इसे खाने में क्या देना है?
1: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ, शाबाश।
2: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
1: कैसी तबीयत है बेटा?
2: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी।

0: हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है, हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ए, ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
8: जी सर।
7: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
9: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
9: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी, ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
7: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
6: पिछला साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
7: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
6: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
8: जी सर,
6: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
8: जी सर।
6: और खेत में रात का पहरा बिठा दो।
8: जी सर।
6: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
8: जी सर।
7: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो।
6: चलो हटो, आउट।
7: साहब,
6: आउट।
7: साहब, साहब,
6: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो। साहब,
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब,
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब,
8: जी सर।
7: साहब, साहब मत करो। साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब, साहब मत करो। साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
9: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।

0: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
1: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
0: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ, ठीक कहा तुमने।
3: हाँ,
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
0: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
1: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
0: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
1: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही कहे।
5: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ, सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: तो भैया सही बात
4: कह रहे हैं।
5: बाजार से हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
7: बताओ भैया, हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: भाइयों, भाइयों, अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या मर जाओ।
8: अब करो या मर जाओ।
5: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
8: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
5: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
3: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
6: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए, उनकी

0: सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
4: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approved 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raje Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul's test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
6: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV cameras for espionage. More than 80 FIRs and over 200 arrests linked to this network have been made so far. With Aman Yadav, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
5: The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacturing of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnav said that with this 31 approvals, a total of 106 applications of companies have got approvals under the scheme.
7: electronics component manufacturing scheme mein
8: a total of 106 projects have now been approved under the electronics component manufacturing scheme attracting an investment of 69548 crore rupees and generating around 75000 direct jobs today 31 projects were approved under the scheme the most encouraging aspect is the rapid pace of industry investment with manufacturing already underway in 38 projects and 16 projects

0: सो जा बेटी, खुशी बहुत रात हो गई है।
1: मिली कैसी?
0: हाँ हाँ ठीक है, कल सुन लेंगे।
1: बिना रुके से ना रुकूं
0: कमली।

0: And listeners, we will be taking calls from you and Mr. Sharad Kohli will be answering them. But before that, do remember that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil.
1: श्रोताओं, आपको बता दें, घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.36% यानी 281 अंक गिरकर 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.32% यानी 78 अंक गिरकर 24,288 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज बढ़त का रुख देखा गया। मिड कैप सूचकांक में मामूली तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.4% का उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points or 0.36% to close at 77,728. The Nifty lost 78 points or 0.32% to settle at 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, एचसीएल टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे। इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 15 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिक्लाइंड 1.7%, फोकस्ड आईटी ड्रॉप्ड 1.6% एंड टेलीकम्युनिकेशन फेल बाय 1.2%। इन कॉन्ट्रास्ट रियलिटी इंक्रीज्ड 1.4%, metal gained 1% and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,353 companies declined, shares of 2,087 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: पॉली सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
2: सर, कैटेडे को नहीं आए थे आप सर?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत हो रही है, बताइए।
2: ठीक है सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करेंगे सर? वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें अब बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज सर,

0: अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 बजे से इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है। हेलो सर।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे और सडनली वो ओपन हो जाता है फिर से 435 पे, तो उसके बाद 3:40 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही उस 100 रुपए ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन था और डर ज्यादा लगा रहता है। धन्यवाद सर।
1: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज हैं। रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो अब जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होती है तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर कूल डाउन होने। सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है अमित कि उस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स फिर स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है। और ये तो बहुत आसान है पता लगाना, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर हैं, FMCG है, डिफेंस है, IT है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूं, आप सेक्टर्स की कंपनीज की अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर जो होता है, हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
2: जी।
1: तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा आपने पूछा, अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पे लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है। ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैश, तो इसमें अब आखिरी वक्त पर ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है। जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है ठीक यही परेशानी ज्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है, इसको लेके काफी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है निफ्टी, एकदम नीचे चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा हालांकि मेरे अंदाज से ज्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
3: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग about this closing auction session, the concerns that Amit has raised and which Arshada ji just addressed, the SEBI chairman, Securities and Exchange Board of India chairman Tohin Kamta Pandey addressed those concerns today and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, Mr. Kant, the SEBI chairman is aware of the concerns and of course the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
1: Absolutely. I think as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system, you know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, yeah, update the system which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
2: जितेंद्र है जयपुर से, उनसे हम बात करते हैं। जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए।
4: हाँ सर, जैसे IPO निकलता है तो मैं उसको देखा तो जैसे एक OFS था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, फेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है, तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फ्रेश इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने

0: किसको क्या मार करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो हम लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
1: आपका जितेंद्र दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने आईपीओ ओएफएस और नेट ऑफर टू पब्लिक आया है। आईपीओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका, तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफे कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
2: बात कर रहे थे,
1: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आया।
3: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, इट्स कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। दिनेश हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दिनेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे।
4: हेलो
3: जी, हाँ जी बताएं। जी
4: हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो हम डिलीवरी मोड आ रहा है
1: दिनेश जी, ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है।
3: वी विल आस्क यू दिनेश जी, आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। रत्नाकर हैज जॉइंड अस।
5: हेलो
2: जी रत्नाकर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में एक प्री ओपनिंग सेशन होता है
1: जी,
5: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन, और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्ट्रिप डाल सकते हैं क्या, और उसका असर जब भी मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को तो उसमें क्या होता है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है। थैंक यू।
1: चलिए रत्नाकर जी, दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है, तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग के लिए खुल जाती है। इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है, पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से, तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल, उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है। आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा, कभी आप उसको ट्राई करेगा, आपने अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय। पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं। दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, हालांकि आप ये पहले कई दफे पूछ चुके, मैं फिर बताना चाहूंगा। FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो ईवीज पे फोकस कर रहे हैं मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नजर बना के देखते हैं। IT वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है, ऑटोमोबाइल नॉन ईवी सेक्शन में डाइसी है, ऑयल कंपनीज भी डाइसी है, स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा अब तेजी पकड़ता यहां से नजर आ रहा है, खासकर कॉपर हो गया
2: जी।
1: और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रॉस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है जी।
2: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर है। दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से।
6: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी बताइए।
6: ये जो डॉलर रुपी का रेट है, रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए
1: जी।
6: लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स, एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है, तो क्या हम लोग को रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके. एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड, लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर. तो

0: द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विषय में स्ट्रेंथन कर सके?
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डिवैल्यू कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए। ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज्यादा रहना है। आज भी $90 के आसपास है, हमें ज्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमजोर होता है। अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी, बल्कि आरबीआई ने अभी FCNR बी डिपॉजिट्स निकाले, उसमें $52.3 बिलियन आया है। अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं, पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी। तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है, जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है, ऐसे जब हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो रूपी पे प्रेशर पड़ता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ आरबीआई अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है और आरबीआई डॉलर रूपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में। तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा और पूरी आरबीआई इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए, पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है।
2: और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है? दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
1: देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूं अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं, कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती हैं मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और ऐसा उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी जीडीपी की अच्छी रफ्तार और अभी आईआईपी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद एआई की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारत के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसके मार्केट जिसको क्यों लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
3: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ बाय सम you know some estimates, the Q1 results have come out better than expected, and in spite of that we see the markets are not reacting to those better than expected results.
1: I think Anubha, market the international factors are overriding,
3: right,
1: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon, they say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time.
3: Right. Let's move forward.
2: आगे बढ़ते हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का ये बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बना करके चलने की।
1: जी हाँ, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंक बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब एनपीएस का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहां जहां रिकवरी है वहां रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीन अप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन बहुत अच्छे आई है, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास बन रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं, और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
3: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
2: जी हाँ, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
4: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, सवाल पूछिए।
4: हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला है कि ये यूनिट होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा फोन मेरा भी है कोहली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अब जो यूक्रेन, रशिया, ईरान और बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग में डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में इन बिजनेस में, इस बिजनेस में बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफी लोगों की तादाद में काफी रोजगार मिलने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए?
1: चलिए, प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज बहुत अच्छा लगता है आवाज अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं प्रीतम जी बोलूंगा कि यूलिप बहुत बहुत अच्छी स्कीम मैं नहीं मानता हूँ। बैंक वगैरह जो उसको बेचते हैं वो ठीक है, उनका काम है बेचना, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मिक्स करने से क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते और बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले जाते। तो मेरा मानना है कि जिसको इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस आप लीजिए इंश्योरेंस के लिए, रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट आप करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत ज्यादा यूलिप का निजी तौर पर बहुत फैन नहीं हूं, और सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है नहीं ले पाती है तो प्रश्न चिन्ह है, पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी। तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है, ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब अजीब। पहले लड़ाइयां होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है।
3: और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए, बाद में रिकंस्ट्रक्शन। और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
5: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving

0: me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I'm still continuing job at the age of 59. Kindly help me, is it the right thing or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
1: Well, Mukesh, I would suggest in such a case you should contact the Provident Fund authorities because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest because you've retired from there. So obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58 if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest, and it's all online these days. It's right. Going to be quite easy, Mukesh. Right.
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in. And a look at the gold and silver prices, Nikhil.
3: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई. वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
1: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहां तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए. उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक. तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है, जैसे बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता. 90 इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती क्या पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है, पर और ज्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती है. और चाइना है, कोरिया है, इनके लिए दिक्कत आ सकती है.
3: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: शुक्रिया, थैंक यू.
2: एंड बिफोर वी क्लोज, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

अभिनेत्री फिल्म से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन में इतने बस इतना ही। राखी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉयल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नबीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। निशिगंधा, रात की खामोशी में घुलती हुई मधुर धुनों का नाम, यादों की उन गलियों में लौट जाने का बहाना, जहां हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। कुछ गीत मोहब्बत की पहली दस्तक हैं, कुछ बिछड़ने की कसक, कुछ गीत बीते दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने सजा देते हैं, तो कुछ यूं लगते हैं जैसे कोई अपना कुछ दूरी से ही सही आवाज दे रहा है।

नामे का फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तो आइए इस सुहानी रात में बीते जमाने के उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ पल बिताएं, जिन्हें सुनकर वक्त थम सा जाता है और दिल कह उठता है। कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वो बस हमारी यादों में और गहरे उतर जाते हैं।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मधुर सुरों से सजी ये गीत जब कानों में रस खोलते हैं तो मन की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हर धुन अपने साथ यादों की कोई मीठी तस्वीर ले आती है और दिल को सुकून से भर देती है। ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ सजती है संगीत की ये सुहानी महफिल।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब दिल में कोई मीठी सी हलचल हो, यादों में कोई अपना उतर आए और हर धड़कन कोई अनकही बात कहने लगे, तो दिल शायर हो ही जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 54 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कॉलेज गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार जब दिल से निकलता है तो उसे कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी कोई मीठा सा गीत ही दिल की पूरी कहानी कह जाता है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज़ में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। हुस्न की तारीफ हो और अंदाज में थोड़ी सी शरारत ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। कभी दो दिलों के बीच प्यार भरी नोक नोक तो कभी एक दूसरे को पसंद करने का खूबसूरत इकरार, यही तो मोहब्बत को और भी दिलकश बना देता है।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जब किसी की मौजूदगी की आदत दिल को लग जाए तो उसकी गैर मौजूदगी हर पल महसूस होती है। घड़ी की सुइयां चलती तो हैं, मगर वक्त जैसे ठहर सा जाता है। हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द घूमता है और दिल बार बार बस यही सवाल करता है, आखिर ये कैसा एहसास है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:57 और

ठीक 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने धन के प्रवाह की मौजूदा और बदलती स्थितियों की कल समीक्षा के बीच आज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR नीलामी की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी आज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और धनराशि 19 अगस्त को वापस होगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को आयोजित 2 VRR नीलामियों बात की गई है। पहली नीलामी में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 96,914 करोड़ रुपए 5.24% की कट ऑफ दर पर स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme, ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and the Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced what they would discuss their remaining demands in December.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, दिल को फिर होश कहाँ, राह का पता कहाँ, तेरी चाहत ने कुछ यूं थाम लिया दिल को कि जहाँ भी गए बस तेरा ही ख्याल साथ चला।

ये रात फिर ना आएगी। आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। आज भी इन हवाओं में उस मुलाकात की खुशबू बसी है और इस खामोश फिजा में जैसे वो गुजरा हुआ पल फिर से मुस्कुरा उठता है। वक्त आगे बढ़ गया, मौसम बदल गए, मगर उस मुलाकात की याद आज भी दिल में उसी तरह महकती है।

जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट कर फिर आएगी। आपकी यादों की महक हर पल दिल को छू जाएगी। दूर जाने से भला कहाँ कम होता है किसी का इंतजार। आप जहाँ भी जाएंगे ये दिल आपको पुकारता रह जाएगा। मेरे सनम फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

लव एंड टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:34 और ठीक 10 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना, रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कभी कभी किसी से बार बार मिलना महज एक इत्तफाक नहीं रहता, हर मुलाकात दिल में एक नई हलचल लगा जाती है। न जाने कब अनजाने में किसी की आदत हो जाती है और कब वही आदत मोहब्बत की शक्ल ले लेती है।

शम्मा की लौ भी बेकरार है उसे अपने पास बुलाने को, और परवाना भी चला है उसी आग में खुद को मिटाने को। इश्क की ये कैसी कशिश है, कैसी है कहानी दिल लगाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से आपने ये गीत सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जरा दिल को संभलने दीजिए, फिर चले जाइए। आपसे मिलकर यूं लगा जैसे कोई ख्वाब उतर आया हो। इन खूबसूरत पलों को जरा आंखों में ठहर जाने दीजिए। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको, दिल की बात पूरी हो जाए फिर चले जाइए।

दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉयल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन SPV की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। कल नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। युवा शिखर सम्मेलन और युवा परिषद की बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदारी देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISR-backed terror group Shahzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plan to subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks, and targeted killings across India. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme, ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, handed over the approvals to the applicants at the function in New Delhi. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced that the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11 to 13 JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. The Qatar India Remittance Service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The enumeration phase of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi concluded yesterday. According to the Office of Chief Electoral Officer of Delhi, about 1 crore 45 lakh forms were distributed as part of the exercise in Delhi. Over 97 lakh enumeration forms have been digitized as of yesterday. Claims and objections can be filed from the 24th of this month to 23rd of September. The final electoral roll will be published on the 27th of October. Flood situation

वक्त हुआ है 2:10, वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। जिंदगी चाहे कितने ही मोड़ ले, वक्त चाहे हमें कितने भी दूर कर दे एक दूसरे से, मगर दिल में बसे इन रिश्तों की मिठास और साथ बिताए वो अनमोल पल हम कभी नहीं भूलेंगे।

बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी कभी मोहब्बत का सबसे हसीन रंग वही होता है जो पास होकर नहीं दूर रहकर महसूस होता है।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 19 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजिया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। सूनी सूनी इन आंखों में फिर से कोई हसीन ख्वाब सजाए, दिल की जमी मुद्दत से प्यासी है, कोई घटा बनकर आए और मोहब्बत की बारिश बरसाए।

फिल्म अपनापन का आपने ये गीत सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कोई पल बनकर दिल में ठहर जाता है, कोई रिश्ता बनकर उम्र भर साथ चलता है। रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, मगर बीते हुए लम्हों की खुशबू कभी कम नहीं होती। शायद जिंदगी का यही दस्तूर है, हम चले जाते हैं मगर हमारी यादें किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।

हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कितनी गहरी बात है। जिंदगी आगे बढ़ती रही, मौसम बदलते रहे, मगर दिल में बसी उस मोहब्बत की याद आज भी वैसी ही है।

प्यार भुलाए नहीं जाते, बस उम्र भर चुपचाप दिल में बसे रहते हैं। सौतन की बेटी फिल्म का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। तेज बहाव से रास्ता खराब होने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पैदल पुल बनाया। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मुकाबले में यूकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इससे पहले पुरुष युगल की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी दूसरे राउंड में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी गहरी होती जाती है कुछ यादें उतनी ही करीब आती जाती हैं। कभी कभी बरसों बाद भी किसी की एक मुस्कान दिल में वैसे ही ताजा रहती है जैसे उससे अभी अभी मुलाकात हुई हो।

रिश्ते सिर्फ कस्में और वादों से नहीं बल्कि एक दूसरे की खामोशी समझने से खूबसूरत बनते हैं। सच्चा प्यार वो है जिसमें वक्त बदल जाए मगर दिल का भरोसा ना बदले।

कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी यादों का कोई पता नहीं होता, मगर रात की तन्हाइयों में उनका एहसास अक्सर सबसे ज्यादा महसूस होता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल की हर बात जुबा तक आ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं, कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखों की एक झलक और खामोशी का एक पल ही बहुत कुछ कह जाता है।

रात के इस सन्नाटे में अगर कोई चेहरा बार बार याद आ रहा है तो शायद वो सिर्फ याद नहीं, दिल का वो खूबसूरत कोना है जहाँ किसी अपने की मौजूदगी आज भी कायम है।

0: मोहब्बत में दीवानगी का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी है। जिसे दिल सच्चाई से चाहे उसकी मुस्कान दूर रहकर भी दिल को सुकून दे सकती है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस प्यारे से गीत के साथ।
1: बात पहरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधि मंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर व उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर एक चीन के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मैच में शियू की को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौहली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and IED petrol bombs attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students were announced that they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with Secretary Department of Higher Education, DG of National Testing Agency, and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air gap system, device, deposit protocols be implemented on war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all the exam processes and submit a report on corrective action taken. The Qatar India Remittance Service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. Delhi government is set to augment medical education capacity across the national capital through a phased examination of undergraduate, postgraduate and super specialty medical seats. As part of this roadmap, the government has adopted a three-pronged approach comprising greenfield projects, brownfield expansion of the existing institutions and expansion of postgraduate and advanced medical programs. In Himachal Pradesh, heavy rainfall led to the closure of 87 roads and the collapse of an iron bridge in Chamba district. A flash flood swept away the iron bridge at Balut Gram Panchayat on the Bharmur area, stranding about 50 pilgrims. These pilgrims, en route to the Ma Bhagwati Kundiwali temple in Bharmur, were rescued by villagers after a strong current damaged their path. Meanwhile, a landslide near Chucky Moor in Solan district blocked the Kalka-Shimla National Highway, causing a brief traffic disruption. Vehicles are currently using a single lane for two-way movement as debris clearing continues. India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand today. The weather agency forecasts heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh today. In badminton, India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yu Qi of China in the first round of the NINS singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। फिल्म मेरा नाम जोकर के इस प्यारे से गीत के साथ गीत है को अपनी आवाज़ से सजाया है मुकेश ने। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म उपकार से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी गीतकार गुलशन बावरा

आपने गीत सुना फिल्म शेषनाग से अनुराधा पोडवाल सुरेश वाटकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म तोहफा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, साथ में बेबी कविता, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर उषा खन्ना की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार अनजान। आगे बढ़ते हैं सुनते अगला गीत फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

और इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और छोड़ के जा रही इस गीत के साथ, गीत है फिल्म सत्या से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार विशाल, गीतकार गुलजार। जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड सरकार ने 2024 की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का यह निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य

0: योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर तथा उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े प्रत्येक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना का चरण कल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरीर से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। इसमें अनुसंधान और विकास विस्तार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर वाशिंगटन अगले कुछ हफ्तों में अंतरिम समझौते को लागू नहीं करता तो ईरान अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमरीका के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ी हैं। सोमालिया के बेदुआ में सरकारी बलों ने एक हमले को नाकाम करते हुए अल शबाब के लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया। कई अन्य को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आतंकवादियों ने सोमालिया के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वाहनों में रखे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में अपने दूसरे पूल डी मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। भारत ने ओलंपिक में रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month, using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions.

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ जिसे अपनी आवाज से सजाया है रविंद्र जैन ने।

सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो जैसे प्रकृति कहती है मन पर बीती बातों का बोझ मत रखो, आज को मुस्कुरा कर जियो, मन को गुनगुनाने दीजिए, क्योंकि खुश रहने के लिए हर बार बड़ी वजह नहीं एक छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है।